0: A message of peace from the Rajghat, Mahatma Gandhi's memorial.
1: भारत की जनता और विश्व की जनता से यही कहूंगा कि वो बापू के दिखाए हुए

0: Special fast track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. Or chahe wo special task force ho, chahe wo central jaise, because this bill and the earlier bill also entitles the government or the authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force, or even where the police PRC is conducting. उनके लिए सेक्शन 12 ए हैज बीन एडेड टू दिस अर्लियर बिल विच प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है. दी इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज अ सेंट्रल एजेंसी और अ स्पेशल टास्क फोर्स. और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट. और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील विल नॉट बी लेस देन डबल बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट एंड अपील विद इन 30 डेज, दैट टू इफ देर आर जस्टिफाइबल ग्राउंड्स टू सेटिस्फाई द क्राउन. इसके साथ ही साथ इससे जुड़े जो और जुर्म होंगे, जो और क्राइम होंगे, दे विल ऑल्सो नॉट गो अनअटेंडेड और स्कॉट फ्री. जो हमारी भारतीय न्याय समिति के प्रावधान है उसके अंतर्गत उनका ही निवारण करने का प्रावधान रहेगा. और इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आए हैं हम, और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त जाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए. उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर. इसके साथ ही साथ अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम्स सिस्टम्स लीक प्रूफ. उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए हु बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक्स, वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हु आर नोन टू हैव एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस इन दीज डोमेन्स. मिस्टर नंदन निलेकानी, को फाउंडर इन्फोसिस, मिस्टर एस सोमनाथ, इसरो चीफ, टपन डेक्का एक्स डीआईबी, मिस्टर वी कामाकोटी, डायरेक्टर आईआईटी मद्रास चेन्नई, और इसी तरह से हमारे 2 और मेंबर भी उसमें शामिल हैं, एक फॉर्मर सेक्रेटरी एजुकेशन और एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट. और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो मोटी मोटी 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी लगभग 76% अर्थात 35 इंप्लीमेंट हो चुकी है. तो कहने का कुल मिलाकर के तात्पर्य यह है, बहुत समय ना लेते हुए, कि सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है. और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी. यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी. धन्यवाद.
1: श्री एन के प्रेमचंदन जी, आपने कोई संशोधन दिया है?
2: यस सर, आई हैव गिवन एन अमेंडमेंट टू द मोशन मूव्ड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर. Sir, this is a very important bill concerning the future generation of the country. The youth and students were on strike and the entire